0: ईस्ट एफएम
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं

कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत दे तर सब हूँ जेते

प्राचीन तन पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केह बद सजा प्रथम।

कहूं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संग्रो दुष्ट जेती उठ बतो तपाता शकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख

हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शकरता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन

और समन आप देखते हम देखते हैं कि पर्दे पे सबसे पहले पर्दे पे कौन आया सबसे पहले नहीं जी मुनीर आ गई हैं मुनीर वेलकम क्या लिखा है मुनीर ने कहती है दुनिया के सबसे तेज और अंदर तक चीर फाड़ देने वाले हथियार लफ्ज और जुबान है नहीं नहीं नहीं आजकल ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं पर आपने कहा लफ्ज और जुबान है उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन लफ्जों के घाव नहीं भरते तो क्या ड्रोन का घाव भर जाता है मिसाइल का घाव भर जाता है मैं कहती हूँ मुनीर वी हैव टू चेंज चिराग पटेल भी ज्वाइन हो गए हैं शब्बीर अहमद कल नहीं आए थे आज लंदन से हैं शामिल लिसनर्स में और सुन रहे हैं और क्वोट ऑफ द डे एम एल विश्वकर्मा ने कहा देखो अपोलोजाइजिंग डज नॉट मीन यू आर रॉन्ग और राइट इट डज मीन यू वैल्यू योर रिलेशनशिप मोर देन योर ईगो जी हाँ उनके साथ बना के रखनी है ना क्या करें मजबूरी है ओके सामने बाकी के मैसेजेस बाद

0: और अगला मैसेज किसका था? मिस्टर एमएल विश्वकर्मा के बाद आए हैं भरत गंगाराम। मिस्टर एमएल विश्वकर्मा इंडिया से थे, अब हम लंदन जाते हैं। कहते हैं लंदन टाइम 8 बजे हैं, घड़ी कहती है बेमिसाल अंदाज की पेशकारा वंदनीय परवीन जी को सलाम कर दो, नमस्कार करो। भरत बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है आपका पहला मैसेज, पहले मैसेजेस में आपका होता है प्यार अली।
1: जिसका मुझे था इंतजार, ये गाना फिल्म डॉन का है जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है, जिसको अनजान ने लिखा है और जिसके धुन कल्याण जी आनंद जी ने बनाए है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी बड़े माया नाज मौसिकार थे। परवीन जी विशिंग यू एंड द बेमिसाल अंदाज वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, ओके पहले दोस्त बन जाइएगा, कहीं मुझे मोहब्बत नहीं है, हम तो वी आर जस्ट प्लेटोनिक। अच्छा फिर कहते हैं मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं, क्योंकि कहते हैं दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। आमिर अली राणा गुड वन। और मुकेश अंबानी सेट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिसर्च सजेस्ट, वो भी करेंगे बात उसमें तफसील से। सना काना आपने फॉरवर्ड अच्छा भेजा है, थैंक यू। जबीन हेरानी आपने कहा है एंड ऑल द लिसनर्स ऑफ बेमिसाल एंड परवीन जी को मैं कहती हूँ नमस्कार। स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस रादर टू बी ऑफ वैल्यू। जी हाँ, हमेशा ये ना सोचो कि मुझे पहला प्राइज मिल जाए, बस ये सोचो कि आपकी कदर कितनी है।

0: मेरी है तू।
1: चलिए बात करते हैं कृष्ण सरोय से, आपके लिए खबर लेकर आए हैं। जी कृष्ण।
2: गुड मॉर्निंग प्रवीण जी।
1: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग टू ऑल योर लिसनर्स। प्रवीण जी, न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने भी 4 स्पेस में रॉकेट छोड़े हैं।
1: अच्छा, रॉकेट।
2: और इंडिया के, हाँ इंडिया के पार हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में 10-12 मिसाइलें उन्होंने एयरपोर्ट तोड़ दिए उनके।
1: हाँ।
2: तो प्रवीण जी वो डिफेंड नहीं कर सके।
1: हाँ।
2: तो इसलिए उन्होंने, अभी चाइना ने उनकी मदद की है और उन्होंने 4 स्पेस क्राफ्ट छोड़े हैं।
1: हाँ, चाइना बहुत मदद कर रहा है टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में।
2: हाँ, बहुत उनकी हेल्प है।
1: हाँ।
2: और अभी होपफुली अभी बराबर पार पर आ जाएंगे जल्दी।
1: लेकिन अभी इंडिया के करीब आना जरा काफी साल लगेंगे।
2: नहीं नहीं, पार मैं बोलता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, हाँ
2: बराबर आ जाएंगे। हाँ,
1: हाँ, इंडिया, पार,
2: इंडिया
1: मुश्किल,
2: पॉसिबल नहीं है यू नो।
1: ऑलराइट, हाँ बिल्कुल,
2: जितनी देर नहीं उनको देते उतनी देर पॉसिबल नहीं है।
1: ओके, कृष्ण सरोय बता रहे थे कि बताए गए रॉकेट छोड़े हैं पाकिस्तान ने चाइना की मदद से। ओके, ये है कोऑपरेशन, टेक्निकल कोऑपरेशन इसको बोलते हैं। अब देखते हैं कि सलमा आमद ने क्या कहना है। उनका रोज सुबह सुबह अच्छे अच्छे होते हैं।
3: अर्ज किया है किसी ने, जिंदगी में सबसे ज्यादा जलील इंसान वो है जिसको हक भी पता हो, सच भी पता हो, लेकिन फिर भी वो खड़ा झूठों की टोली में हो। ए मेरे दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखे, झूठ के महल में गुलाम बनकर जीने से बेहतर है हक के रास्ते पर बादशाह बनके अकेले चलना। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा आमद के सुमो।
1: बाद सबसे जलील, सब डिस्गस्टिंग जो इंसान है, उस जिसको उस हक और सच का पता हो और वो झूठों की टोली में खड़ा हो, कमाल है, बहुत खूब, सलमा आमद। रंजन विनोद ने गुड मॉर्निंग कहा है सभी लिसनर्स को, फ्रेंड्स को, जो वो यहाँ छोड़ गई हुई हैं और अब इंग्लैंड में है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने भेजा है शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दिस इज ज़ूरी, अ वाइल्ड लायन फ्रॉम केनिया मसाई मारा रिजर्व विद अ स्ट्राइकिंग वेवी मेन दैट मेड हिम वायरल। समझ, ज़ूरी एक शेर का नाम है, यहाँ का मशहूर शेर है। इसके बाल देखें, ऐसे लग रहे हैं किसी औरत के बाल हैं, घुंघर वाले, लंबे लंबे घुंघराले बाल। पीपल कॉल हिम द मोस्ट हैंडसम लायन इन द वर्ल्ड, ज़ूरी, इसीलिए इसका नाम दिया है। कितना खूबसूरत, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो लायन है ये एक खूबसूरत रोबदार जानवर है बड़ा, और यहाँ देखें इसके बाल इतने खूबसूरत हैं। चंद्रिका वासंत गोसाई, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा गाना सुनाया है, बहुत खूब। और कहते हैं कि अभी ये जो देखो मेरा दिल मचल गया, कहते हैं मिस्टर एमएल विश्वकर्मा, ये फिल्म सूरज का था, 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। वजंती माला हैं और वो जो गाने वाली हैं वो शारदा हैं। जी हाँ, कभी कभी हम शारदा की आवाज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पर हैं
4: परिन जी, आप ठीक हो? परिन जी, ये गाना मैं आपसे मांग रही हूँ मेरे 3 भाइयों के नाम और मेरे बेटे के नाम, प्लीज मुझे ये गाना आप मुझे दे देना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।
1: ओके, हुस्ना मोहम्मद, आपको दिया, आप बड़ी अच्छी लिसनर हैं, रेगुलर हैं, तो ऑफ कोर्स गाना बनता है, आपको डेडिकेट करती हूँ।
5: It's 10:21. We unlocked Gavah for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quick Mart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
0: We've got your favorite song for every moment, because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: प्रवीण जी, चेहरे पे घिरी है जुल्फें, ये गाना फिल्म सूरज का है, 1966 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और जिसको संजय पुरी ने लिखा है और जिसकी धुन शंकर जयकिशन ने बनाई है। गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
1: अब चलते हैं किसके पास, प्यार अली भाटिया के बाद आए हैं भरत गंगाराम। पहले लिसनर है जिन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने कहा हर्ष गोयनका कौन है, आई थिंक बजाज फैमिली है। नहीं, अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लें, भरत गंगाराम आपके लिए तो आसान है। ML विश्वकर्मा ने जवाब दिया है और मुझे यकीन है कि ये करेक्ट है। जी, हर्ष गोयनका इज एन एमिनेंट इंडियन बिलियनर। समझ, इनकी कदर 2 से 4 बिलियन डॉलर है और सिर्फ 68 के हैं मेरे ख्याल से, करीब 68। ही इज द चेयरमैन ऑफ RPG एंटरप्राइजेस, वन ऑफ इंडियाज मेजर

और समय हम देख रहे हैं कि हर्ष गोयनका ने कहा क्या है, वो हैं कौन। सोनल, आपने लिखा है कि हर्ष गोयनका इज द सन ऑफ द लेट इंडस्ट्रियलिस्ट रमा प्रसाद गोयनका। He graduated from a bachelor degree in economics from St. Xavier's College in Kolkata and went on to earn MBA from the International Institute of Management Development in Lausanne, Switzerland. Mein. Kehte hain ki inhone, educated hain bade. Inhone International Institute se samin MBA bhi kiya hua hai. Sonal, thank you. Bharat, kehte hain ki civic sense ke bare mein हर्ष गोयनका ने कहा है, सिविक सेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आपने डिटेल कोई नहीं दिए। चिराग पटेल कराटीना, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ आरपीजी एंटरप्राइजेस, कहते हैं ही शेयर स्विस होटल्स रूल्स फॉर इंडियन गेस्ट्स। ये है उन्होंने कहा, समझ, उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं, नियम जो के स्विस होटल्स अपने भारतीय मेहमानों के लिए जारी करते हैं। भारतीय मेहमान समन, ये यूरोप के देश किस कदर समन दलेरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करके लॉ भी बनाते हैं कि रेसिज्म खराब है, गलत है, नाजायज है। ठीक है चिराग, थैंक यू। अमीर अली राणा, प्रवीण जी ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ यहूदी, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ हेलन विद कुकू। ओ अच्छा, बहुत ही अच्छा डांस होगा क्योंकि गाना इतना ब्यूटीफुल है। खोई सी नजर है रसीला, हिज सन अनंत गोयनका सर्व्स एज द वाइस चेयरमैन ऑफ आरपीजी एंटरप्राइजेस, या इनके बाप थे पहले ओनर फाउंडर और अब ये हैं, और इनके बेटे अनंत गोयनका जो हैं वो वाइस हैं। सेटिंग द स्टेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप इंटरेस्ट्स

0: known for his active philanthropy, art, patronage and large social media presence. जैसे मैंने अभी अभी कहा, तब तक रसीला का मैसेज नहीं आया था कि इनकी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी फॉलोइंग है. रितु गुप्ता.
1: प्रवीण जी नमस्कार. आप वो हर्ष गेमका की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी थोड़ा हाल में सोशल मीडिया बोला है, जो सही लोग होते हैं ना, सफल लोग जो होते हैं, वो समय का इंतजार नहीं करते, वो सही समय पर ही वो काम करना शुरू कर देते हैं. और गुस्से पर नियंत्रण करना ही नेतृत्व की पहचान है. रितु गुप्ता, मैंने तो न्यूज़ में यही सुना था.
0: जो उन्होंने किया है सोशल मीडिया पे जारी, वो रूल्स हैं जो कि स्विट्जरलैंड में एक होटल में जारी किए गए हैं इंडियन टूरिस्ट के लिए. शहजादी साहब द डुएट प्लेइंग गीता दत्त एंड लता जी, आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट. जी जी, मेरा फेवरेट है एक्चुअली. अच्छा यासर, अस्सलाम वालेकुम. हर्ष गोयनका रिसेंटली स्पार्क्ड अ मैसिव सोशल मीडिया डिबेट. जी, ये बातें आपको बतानी होंगी मुझे, क्योंकि मैंने उनका जिक्र किया है. सो पहले तो कि सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई है अबाउट द सिविक सेंस ऑफ इंडियन टूरिस्ट अब्रॉड. जब भारतीय पर्यटक बाहर जाते हैं एज टूरिस्ट, तो क्या होता है. हिज वायरल पोस्ट रिकॉल्ड एन इंसिडेंट वेयर अ स्विस होटल डिस्प्लेड रूल्स एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन गेस्ट्स. जैसे इस होटल में लगा दिया गया सामने कागज पे कि भारतीय जो हैं टूरिस्ट पर्यटक, उनके लिए ये नियम लागू होंगे. वार्निंग देम नॉट टू स्टील बुफे फूड, यूज पर्सनल कटलरी और मेक एक्सेसिव नॉइज. समिन, ये गोरों के लिए क्यों नहीं होते ऐसे नियम? क्यों अलग करके भारतीयों को ये कहा गया समिन? क्योंकि आई डोंट नो, उनको जवाब नहीं कोई देता. मुंह तोड़ जवाब दे तो फिर ही है ना. सोनल, इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका रिसेंटली स्पार्क्ड अ मेजर डिबेट. या अभी जो आंसर दिया है यासर ने, वही सोनल ने. थैंक यू परवीन जी, अ लिस्ट ऑफ जेम्स हैज बिगन. रसीला जी, आगे भी आपको पसंद आएंगे गाने जो मैंने चुने हैं.
2: स्पाइस विद द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ योर फेवरेट म्यूजिक. ईस्ट एफएम, एशियन मिक्स. East FM, Kenya's premier Asian mix. Back to Kenya's premier Asian mix. East.

और समय अब चलते हैं देखते हैं हर्ष गोयनका ने जो कहा था वो एक्चुअली क्या था ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड होल्ड्स एन एमबीए रसिला ये भी आपने कह दिया है भरत गंगाराम फ्रॉम तीन बत्ती का जो गाना था वो यूट्यूब में जो आपने अश्विन दोषी साहब से बात की थी जी भरत गंगाराम उसकी बात बाद में पहले ये हर्ष गोयनका की बात ख़त्म हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक पाकिस्तानी आवाज़ आपको सुनाते हैं नाम है हुमैरा अरशद

वाह वाह, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गाना शबीर अहमद इन लंदन। अच्छी बात आपको पसंद आया। जबीन हीरानी कहते हैं कि वाइल सम इंडिविजुअल्स सी दीज गाइडलाइंस एज हेल्पफुल रिमाइंडर्स फॉर बेसिक ट्रेवल एटिकेट, अदर्स व्यू देम एज डिस्क्रिमिनेटरी। सिमिलर रूल्स और जनरल साइंस रिगार्डिंग बूफे एटिकेट, noise control are commonly applied to large tourist groups of any nationality in Switzerland to maintain region's quiet, respectful. Achha, Jabin Hirani kehte hain, pata hai ki aise niyam banane padte hain taaki Switzerland ka jo hai samin kudarti mahol wo barqarar rahe, unko shor sharaba nahi chahiye, so nahi. Okay, aur fantastic playlist Jabin Hirani. Good. Amir Ali Rana, Parveen ji, can you please play my song Tasavvur Khanum? Thank you. Of Tasavvur Khanum. Ye kyunki Pakistani numbers honge to I will need pehle se socha, kyunki hum ye hindi sangeet suna rahe hain na, isliye. और कहते हैं कि plans have been released for a $16 billion mile long called the freedom ship. ये मैंने अभी बता दिया है, अभी बताया है। अब सामिन कल पर चंद दिन हुए मुझे कॉल किया रनेजा नायर ने, तो कहते हैं कि परवीन जी मैं अखबार, जितना अखबार पढ़ती हूँ, जितनी मैं खबरें देखती हूँ, मेरे जहन में सवाल बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा कैसे सवाल? कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने, इंसान ने जिंदगी की कदर खो दी है, जिंदगी की कोई कदर नहीं रही, नो वैल्यू। कहते हैं कि हम इतनी बेदर्द कौम बन गए हैं, हम में से ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो है समन, हम में वो जज्बा नहीं रहा, हम किस ओर चले गए हैं? कहती हैं हम एग्रेशन की ओर बढ़ गए हैं, हम वायलेंस, हिंसा की ओर चले गए हैं, तशद्दुद। कहती हैं कोई रिश्ता पाक नहीं रहा, जुल्म और बर्बरियत बढ़ नहीं रही? बिल्कुल समिन, आपके आंखों के सामने बढ़ रही है। बाबरिज्म, इंसान क्या बन गया है? कहते बच्चे, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जुल्म से, धर्म के नाम पर कत्ल हो रहा है, धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है। समिन उनका सवाल है क्या हो रहा है? क्या आपकी जो रिलीजियस बुक्स हैं कोई रोशनी डालेंगी इस पर? क्या आपका धर्म बताता है क्या हो रहा है? क्योंकि कुछ तो हो रहा है, बहुत बदल चुका है, दुनिया बदल गई है। ये चंद 10-15 बरसों में आप देखें क्या हो रहा है और होता जा रहा है। क्यों? 07011106106 पर जो आपने समझा है अपने मजहब से वो मुझे बताएं कि आपकी धर्म की किताब क्या कहती है।

0: जयश्री शिकोत्रा सर, जयश्री शिकोत्रा ने मैसेज भेजा है। आप जानते हैं बर्गन नॉर्वे में रहते हैं। कहती हैं कि वी आर ट्यून्ड एज यूजुअल एवरी डे टू बेमिसाल अंदाज, बट फ्रॉम टुमारो वी विल बी लिसनिंग फ्रॉम केन्या। कहते हैं हम मुंबासा आ रहे हैं एक महीने के लिए। क्या बात है समझ। कोई अगर जयश्री और सुरेश शिकोत्रा को जानते हैं तो वो मुंबासा आ रहे हैं, फॉलो कीजिएगा, नंबर ले लें मुझसे। और जतेंद्र ने कहा है कि देखो मेरा कज़िन, मैं उसकी फ़ोटो आपको भेज रही हूँ, जितेंद्र के कज़िन हैं, 102 साल के हो गए हैं। वैसे लग रहे हैं 100 साल नहीं, लग रहे हैं करीब 90 के। जी जी। और सोनल ने फ्रीडम शिप की तस्वीर भेज दी। मैं तो फ्रीडम शिप में कभी ना पैर रखूं, ना जाने क्या का क्या हो सकता है। सबसे पहले दुनिया का इतना बड़ा जहाज। खैर समिन, मैं पूछ रही हूं आपको कि क्यों हो रहा है जो हो रहा है दुनिया में, कोई तो वजह होगी ना। और शबीर अहमद, पहले उनकी बात सुन लेते हैं।
1: सलाम और आदाब शहजादी साहब और सबको। शहजादी साहब, ये बात हो रही है मजहब के नाम पे। कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो आपको सिखाता है वायलेंस। कोई भी मजहब हो वो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं। ये तो अब बर्बरियत हो रही है दुनिया में बिकॉज ऑफ द अमेरिकन्स एंड द वेस्ट है ही ऐसे वैसे। इन्होंने शुरू से लूट मार लोगों को मारा है।
0: अच्छा, शबीर अहमद की बात से मुझे ये लगता है कि आप मानते हैं जो मगरिब की दुनिया ना, पश्चिम की दुनिया, वो इसी तरह की है, वो लूट मार में मानते हैं, लेकिन कहते तो कुछ और हैं, मानते कुछ और हैं, न जाने क्या। लेकिन अभी तक मैं चाहती हूं कि मुझे बताएं आप कि ऐसा हो क्यों रहा है। रसीला ने लिखकर भेजा है, कहते हैं कि देखो श्योरली वी आर वॉचिंग क्या हो रहा है, वी आर वॉचिंग सैडली एज आर वर्ल्ड्स आर टर्न्ड इनटू सैड स्टेट्स। आई कीप वंडरिंग व्हाट्स हैपनिंग टू आर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वॉर्स, सुइसाइड, रेप, लूटिंग एंड मच मोर। बिल्कुल, आपने भी सवाल पूछा है लेकिन अब आपने जवाब दिया है। रसीला कहती है, एज पर जैनिज्म, महावीर आवर 24th तीर्थंकर, ही सेज वी हैव टू फॉलो अहिंसा नॉन वायलेंस द सुप्रीम प्रिंसिपल, इट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स कॉजिंग हार्म टू एनी बीइंग वेदर इन। नहीं, ये तो उन्होंने कहा है ना, पर मानने मानती दुनिया ने तो नहीं इसको माना ना, सो क्या हो रहा है। ट्रूथफुलनेस, स्पीकिंग ओनली हार्मलेस प्लेजेंट, ये तो तीर्थंकर की बड़ी अच्छी बेहतरीन टीचिंग है, लेकिन इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। दिल ने फिर याद किया गाना सुनकर, क्या ब्यूटीफुल, आई लव द सॉन्ग रूपल, आई एम सो हैप्पी। अब चलते हैं फरहंदा शेख।
2: अस्सलाम वालेकुम परवीन, मैं फरहंदा शेख बोल रही हूँ। आपका तो मौजू बहुत अच्छा है, तो आपके जो गाने लगते हैं रोज़, उसमें एक से एक बढ़कर गाना होता है, तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और दूसरा मैंने ये कहना था, परवीन हम कहते हैं कियामत की निशानी है, क्योंकि लोगों को लोगों की कोई परवाह नहीं है, जैसे वो उनको मार रहे हैं ऐसे लगता है जैसे उनमें कोई दिल ही नहीं है किसी के लिए। जो आपको चोट लगती है तो आपको कैसे फील होता है, ऐसे दूसरे इंसानों को लेना चाहिए। परवीन, ये कल युग का जमाना है, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, बस अपनी पड़ी हुई है, पैसा पैसा पैसा, या मुल्क जो किसी जो ज्यादा मुल्क है जिनके पास ऑयल या पेट्रोल है उनको लूटना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम अमीर हो जाए, बस यही है दुनिया की रीत मुझे लगता है। अल्लाह हाफिज।
0: आपने कल युग का जिक्र किया है ये मजहब कल युग का दौर चल रहा है ये कहना है उनका आई एग्री कि ये दौर आया है आपने ये भी कहा कि कयामत भी नजदीक है शायद शबीरम अब कयामत नजदीक आने की ये सब निशानियां हैं नंबर 1 कल युग आप मानते हैं है तो फिर ये तो दो आंसर्स हमें मिले हैं तो ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल ने फिर याद किया जी हां एक और गाना ब्यूटीफुल

0: पीरियड दौर और फिर खराब दौर आता है, फिर आएगा खुशगवार दौर, फिर खराब। तो हम इस खराब दौर से चल रहे हैं।
1: प्रवीण जी, वैसे तो देखो धर्म के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन पुट किया है वो आपका धर्म क्या कहता है। धर्म तो सभी का एक ही, मेरे को लगता है सबकी एक ही शिक्षा होती है। हमने जो अपने बुक में पढ़ा है तो हमारे तो यही बोलते हैं हिंसा परम धर्मो। तो शॉर्टकट में बता रही हूँ, ये धर्म के बारे में बहुत लंबी स्टोरी हो जाती है। ये ना सारा ये पता है ना, ये ग्रीड चल रहा है प्रवीण जी। एक तो गद्दी कुर्सी के लिए ग्रीड है, एक दूसरे में आपस में फाइट करवा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है ना, ये सारा सोशल मीडिया अपने चैनल चलाने के लिए ना हमारे एक दूसरे लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात आप माइंड ना करना, आपके धर्म की क्लियर करनी है, क्योंकि अभी वो लंडन में भाईसा ने बोला ना, सबका धर्म एक ही चीज खाता है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग सोशल मीडिया में मैंने देखा था, अभी कुरान में ये कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लोगों को कुरान में क्या काफर बोलते हैं ना, क्योंकि हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो हमको ये लोग आपके धर्म में क्या काफर बोलते हैं। तो ये मैंने देखा था कि बोलते थे कि कुरान में लिखा है काफिर को यहाँ भी देखो उसका कत्ल कर दो, लेकिन मैं तो ये बातें नहीं मानती। मेरे तो मुस्लिम फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, आपने भी देखा, मैं तो आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बहुत फ्रेंड है मुस्लिम। मेरे को ये थोड़ी सी छोटी सी बात जरूर क्लियर कर दो, मेरे ख्याल से तो कोई धर्म नहीं बोलता कि एक दूसरे के लिए खून खराबा कर दो। आजकल ग्रीड बहुत बढ़ गई है कुर्सी के लिए, सिख हिंदुओं में भी लड़ाइयां करवा रहे हैं लोग। देखो हम तो कभी बोलते ही नहीं थे कि सिख और हिंदू अलग है, वो उन्होंने सोशल मीडिया में ये भी गद्दी के लिए देखो नफरत एक दूसरे की पैदा कर रहे हैं। तो जरा आप भी मेरे को एक्सप्लेन करिए रितु गुप्ता, मेरे को बहुत शौक होता है धर्म की नॉलेज लेने के लिए।
0: जी, ये बिल्कुल ठीक है जो आपने, लेकिन ये बहुत पुरानी, सदियों पुरानी, 1400 साल पुरानी बात है, अगर तो उस पर आज अमल नहीं हो सकता। पर लिखा था, लिखा जा चुका है, पर वो उन हालात के लिए था, आज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
2: East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: East FM,
2: celebrating your favorite occasion. East FM,
3: Kenya's premier
2: Asian mix.
3: Asian mix. It's 11:26.
2: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
4: Our client is seeking a detail-oriented and experienced full-time accountant to provide financial oversight, ensure statutory compliance, and support management through accurate and timely financial reporting. Bachelor's degree or diploma in accounting, finance, or a related field, and proven experience as an accountant, preferably in an SME environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
2: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews. Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
3: East FM.
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और समझ, अगर आप कहते हैं कि ये तय है कि ये क़यामत के करीब होगा, इसका मतलब किसी ताकत ने तय कर दिया है कि लोग जालिम हो जाएंगे। अगर ये तय है तो फिर हमारा क्या कसूर है इसमें? फिर इंसान का कसूर है कि नहीं?
1: प्रवीण जी, अस्सलाम वालेकुम। सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। हैविंग अ प्लेस टू गो टू इज अ होम, हैविंग समवन टू लव इज अ फैमिली, हैविंग बोथ इज अ ब्लेसिंग, एंड हैविंग फ्रेंड्स टू टॉक टू is one of the greatest gifts in life. Good morning, Praveenji, to you and all your lovely Bemisar listeners.
0: Thank you, Salim Meher. पर हम ये बात कर रहे हैं कि आज के दोस्त कल दुश्मन बन जाएंगे, या कल के दोस्त जो थे आज दुश्मन बने हुए हैं, ये भी तो हो सकता है ना। Too much at stake in our world, be it war, tech world, climate change, coping with inflation, ये रूपल ने लिखा है। Human race is taking a toll on the human race. Everyone wants to be superior. Hence, we are forgetting our existence and purpose. Samin, yahan hume mil raha hai ek jawab. Very interesting. Rupal ne kaha hai ki hum apne kyun maujood hain is duniya mein, क्या मकसद है हमारे जिंदा रहने का, वो भूल चुके हैं। दैट मे हैव हैपन्ड, यस। एक्चुअली वी आर इन अ फेक वर्ल्ड, दीज आर माई थॉट्स, एंड दीज थ्री थिंग्स आर रुइनिंग एवरीथिंग, पैसा, पावर एंड पोजिशन। जी, पैसा, पावर एंड पोजिशन हमें खराब कर दिया है हमारी इंसानी कौम को। अच्छा रूपल, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ जो लिसनर्स हैं उनके जवाबात में, उनकी रिस्पांस में हमें सही मिल रहा है कुछ ना कुछ।

0: बहुत गंभीर हमने टॉपिक लिया है आज, बहुत संजीदगी से हम सोच रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की भी तो बात चाहिए ना।
1: प्रवीणा जी वालेकुम सलाम। दूसरा ODI मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला जीत लिया।
0: अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। थैंक यू दिनेश भट्ट। प्रवीण जी, आई थिंक मोस्ट रिलीजियस प्रीच पीस एंड हार्मनी, बट आई थिंक देर आर अदर फैक्टर्स एज बिलो। These shifts are driven by a convergence of global crises. वो कहते हैं धर्म को ना बीच में डालो, हर चीज का धर्म नहीं है कारण। कहते हैं कि ये देखो ग्लोबल क्राइसिस, पूरे विश्व में बहरान पैदा हुआ है, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम द पेंडेमिक। जब महामारी होती है तो समन कहते हैं कि अपनी मईशत इकोनॉमी पर असर पड़ता है। Widening wealth inequality and rapid technological disruption. कहते हैं फिर जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनमें बहुत फासला बढ़ता जाता है, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस है, समय युद्ध है। Together these pressures have fractured societal trust, leaving millions feeling economically vulnerable and politically alienated. इस तरह से कहते हैं जो आवाम है वो महसूस करते हैं कि वो तन्हा रह गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। दे आर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ ऑपरचुनिस्टिक लीडर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्सप्लॉइट बाय फॉर ऑफरिंग सिंपलिस्टिक नेशनलिस्टिक और डिवाइसिव नैरेटिव्स। जो कह रहे हैं हितेन है शायद, जी हाँ, वो कह रहे हैं कि देखो जब ऐसे हालात बिगड़ते हैं ना तो जो इंतहा पसंद है एक्सट्रीमिस्ट, जो बहुत इंतहाई रास्ते इख्तियार करते हैं, वो फिर लोगों को वरगलाते हैं, लोगों को वरगलाते हैं कि देखो हमारे पास हल है, दुनिया आपको हल नहीं दे सकती, आपके लीडर नहीं कर सकते हल आपके मसाइल, हमारे पास हल है। तो फिर वो लोगों के दिमाग वॉश करना शुरू करते हैं। रैपिड डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव स्पार्क्ड कल्चरल इनसिक्योरिटीज। सम पुराने ज़माने में हमारी तहजीब थी ना, एक तरह का सीमेंट था, हमें इकट्ठा रखता था, लेकिन आज नहीं। राइट विंग ग्रुप्स कैपिटलाइज ऑन दीज फियर्स। जो राइट विंग है ना, समझ, दाएं बाजू के लोग जो हैं एक्सट्रीमिस्ट्स हैं और नस्ल परस्त हैं, रंग परस्त हैं, फिर वो जीतने लगते हैं। हितेन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच इंडीड। कांट रीड इट टू द एंड, पर जितना है वो मैंने पढ़ा।
2: हेलो प्रवीण जी, मैनू तो लगता कि जी लड़ाइया करते हैं ना, यह बस इन्हों की ईगो आ के मैं तकड़ा वा, दूसरा कहना मैं तकड़ा वा, इन्हों दोनों चो कोई नीवा नहीं होंगे, दोनों पास जे एक एक दूजी गल ना सुनन फिर लड़ाई होंगी ही होंगी। पर हूँ इन्हों के दिमाग दे विच परमात्मा ही मेहर पावे के दुनिया नू क्यों मार रहा बिना वजह ते, परमात्मा के बंदिया नू जी नहीं दिंदे है। थैंक यू जी,
0: बहुत खूब।
3: More of Kenya's premier Asian mix, East FM.

0: और रसेला कहती हैं, all these crises are deeply intertwined. जो हितेन कहकर गए हैं ना, कहते हैं वो सब इकट्ठे होकर are the root causes, यही जड़ है कि हमारी दुनिया ऊपर तले हो गई है. The global climate has changed and severe economic hardship. वो कहती हैं कि क्योंकि गुर्बत, महंगाई, इस तरह की समस्याएं जो हैं, आपकी मोईशत का तबाह हो जाना, इकोनॉमिक क्राइसिस होना, तो ये सब इकट्ठे होकर हमारी दुनिया को उन्होंने बना दिया जो है. लेकिन ये क्राइसिस बनाने वाले भी हैं ना, इंसान ही हैं. वो जो क्राइसिस पैदा हुई हैं वो इंसान की वजह से ही हुई हैं.
1: सलाम परवीन जी. परवीन जी, आज का सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो खून खराबे की बात चली है. देखिए, कोई भी धर्म हो परवीन जी, वो हमें ये नहीं सिखाता कि खून खराबा किया जाए या बेगुनाहों को मारा जाए. क्या आपका धर्म सिखाता है, क्या मेरा धर्म सिखाता है? नहीं परवीन जी, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कत्लेआम करना, खून खराबा करना. परवीन जी, ये तो आपकी और मेरी सोच पर निर्भर है क्या सही है और क्या गलत है. मुझे लगता है कि ये धर्म के ठेकेदार हैं परवीन जी, जो कहते हैं इसे मारो तो स्वर्ग मिलेगा, अगर ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे. मुझे लगता है अपनी अपनी सोच को बदलना होगा और खून खराबा खुद ही खुद कम हो जाएगा परवीन जी. ऐसा मेरा सोचना है और सबको अपने अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है. बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, सोच को बदलें, अपने आप सब कुछ कम हो जाएगा. शुक्रिया, धन्यवाद.
0: अजय पाल, वाकई सही कहा है जो आपने कहा कि अपने अंदाज को देखने का जो आपका है नजरिया, नजरिए को बदलें.
2: परिंजी, मैं वापस आई हूँ. परिंजी, ये आपने देखा था ना, इस दफा हज पर जो खुतबा हुआ हज का, उस पे भी इन्होंने बोला कि आप लोग सब लोग अल्लाह के, अल्लाह से तोबा करो, अल्लाह के ऊपर चले जाओ आप, क्योंकि ये अभी बहुत ख़राब ज़माना आने वाला है और आ गया है. ये सब कुछ आखिर ज़माने का निशान है और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला हुआ था ये बात. परिन जी, तो ये सब कुछ नज़र आता है अभी. आप देखो इतना सारा कुछ है, ना कोई किसी का है, ना रिश्ते वाले, ना भाई बहन, कोई किसी का नहीं है. परिन जी, ये सब आखिर ज़माने की निशानी है. बस ये जो हज पे परा हुआ था, इन्होंने खुतबा दिया था ना, उन्होंने बोला था कि तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो, तो यही है आखिर जमाना. परवीन जी, बस
0: हुस्ना कह रही है कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए ये सब हो रहा है. और जो खुतबे की बात करें, समझ, जब हज होता है तो उसमें जो इमाम मस्जिद हैं वो देते हैं खुतबा आखिरी हाजियों को, तो उन्होंने कहा है, इस बार पैगाम दिया है कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, बहुत बुरा हो रहा है और होने वाला है. उन्होंने कहा है, हो सकता है होने वाला हो. सोनल, आपने कहा है कि कलयुग इज़ द फोर्थ एंड फाइनल एरा इन द हिंदू कॉस्मिक टाइम साइकिल. कहते हैं हिंदू मानते हैं कि जो ज़माना है इस वक्त चल रहा वो कलयुग है, वो चौथा है. नोन फॉर इट्स डिक्लाइन ऑफ धर्म, कहते हैं इसमें धर्म नीचे जाएगा, राइचसनेस जो है मॉरल डिके होगा, आपके उसूल ख़त्म हो जाएंगे, जो गलत होगा वो आपको सही लगेगा. एंड द राइज ऑफ मटीरियलिज्म, समझ, जो है माल, धन, दौलत, उसके पीछे दुनिया भागेगी. अकॉर्डिंग टू सेक्रेट टेक्स्ट इट स्पेंड्स 432,000 ईयर्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ह्यूमैनिटी ड्रिवन बाय डिजायर, ग्रीड एंड डिस्कॉर्ड. 432,000 का दौर है साल, बहुत लंबा वाकई. और कलयुग में बहुत कुछ आ जाता है, समझ. और यहाँ पर है सेलिडार इन लंदन, क्या कहती हैं, कहती हैं जज मी, नहीं, डोंट बी सो क्विक टू जज मी, ऊपर एक लाइन खो गई थी. आफ्टर ऑल यू ओनली सी व्हाट आई चूज टू शो यू. कहते हैं कि देखो मुझे जज मत करो, आपको नहीं पता जो मैं दिखा रही हूँ ना, मैं खुद आपको दिखा रही हूँ बहुत कुछ छुपा हुआ भी है सेलिडार थैंक यू आगे हैं कौन आए हैं शब्बीर अहमद क्या कहते हैं
3: शहजादी साहिब शब्बीर अगेन क्या ये रितु जी ने ये जो क्वेश्चन किया है कि वो कुरान में लिखा है कि काफिरों को मारना ये तो गलत बात है ऐसी कोई बात नहीं इनफैक्ट जो सूरत काफिरून है उसमें तो इनफैक्ट बताया गया कि लखुम दीनुकुम वलियदीन आप अपने मजहब से हैं हम अपने मजहब से हैं ये गलत बात है कि कोई यू हैव रेड द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन प्रॉपरली देन सॉरी बट ये है हकीकत ये है ऐसी कोई बात नहीं है
0: अच्छा बिल्कुल शब्बीर अहमद थैंक यू सो मच और एक और है फूलों वाले ये गुलदस्ते जब हमने सवाल पूछा हो तो आप जवाब दें फूलों का कोई फ़ायदा नहीं मुझे अच्छा सलमा अहमद परवीन जी आई टोटली अग्री विद अजय पाल दैट वन नीड्स टू चेंज वंस एटीट्यूड ये भी ठीक है अब मिसेस धंजल से ज्ञान लेते हैं
4: हेलो प्रवीण जी गुड मॉर्निंग मिसेस धंजल हियर प्रवीण जी आज आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा है और इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी प्रवीण जी हम सबको पता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है क्योंकि पहले हम अपने टीचरों की अपने लीडरों की अपने धर्म के जो ठेकेदार हैं उनकी बहुत इज्जत किया करते थे लेकिन आज वही गलत रास्तों पर चल पड़े हैं उनके दिल में वो चीज़ नहीं है लीडरों के दिल में देश का प्रेम नहीं है और जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं बेशक वो पुजारी हो बेशक वो ज्ञानी हो बेशक वो अपना कोई भी हो लेकिन उनको भी धर्म में ज़्यादा ध्यान नहीं है उनको ज़्यादा पैसे में प्यार है लीडरों को भी वो अपनी जेबें भरे हैं देश से कोई प्यार नहीं है टीचर जो हैं वो स्कूलों में इतनी करप्शन कर रहे हैं बच्चे का बच्चों से उनको प्यार नहीं है बच्चों को कईयों को रेप भी कर देते हैं तो मेरी परवीन मेरी बात सुनो तो फिर अपने जो नौजवान हैं उनमें जो ये चीज़ है आज का जो वातावरण है वो ऐसा ही बन गया प्रवीण जी लेकिन हमको पता है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते पता क्यों क्योंकि अब सब जो चीज़ है वो अपने दौरे से बाहर है बहुत इज टू मच इतनी हद पे पहुंच गया है कि उसको अभी इम्प्रूव करना वेरी डिफिकल्ट और हम सहते ही जा रहे हैं प्रवीण जी ये अफसोस की बात है थैंक यू वेरी मच टेक केयर गुड डे
0: बहुत जज्बाती आंसर वेरी ट्रू सच से भरा हुआ था समझ कितना इंसान टॉलरेट करता जा रहा है आपको जो सिखा रहे हैं जो बता रहे हैं मजहब के बारे में उनको इल्म ही नहीं है ये बात आई एग्री विद यू मिसेस धंजल

0: और समय जिस लिसनर ने हमें इतना ब्यूटीफुल सवाल दिया था वही मैंने उनको पूछा कि अब आप बताएं आपका क्या है नजिया. शी हैज हर्ड द होल प्रोग्राम. उसने आपके एक एक लिसनर के व्यू सुने हैं. रनेजा नायर, सुन रनेजा अब मुझे बताओ हम इसका नचोड़ कैसे निकालें, क्या है रीजन.
1: थैंक यू परवीन जी, आपने मेरा ये क्वेश्चन रेज किया.
0: वेरी गुड वेरी गुड.
1: एंड पीपल हैव लाइक्ड इट.
0: यस.
1: एंड दे हैव गिवन देयर ओपिनियंस.
0: बिल्कुल.
1: आई लाइक्ड सम ऑफ द आंसर्स व्हाट पीपल हैव गिवन. किसी ने सोशल मीडिया को ब्लेम किया विच इज फेयर इनफ विच इज ट्रू. एक तो है हम किसे फॉलो करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं वो हमें सही सीख दे रहा है कि नहीं,
0: या हम
1: ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. थर्ड, देयर इज नो ह्यूमैनिटी इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. इट इज ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ. इट इज नॉट अबाउट वी. मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है. लोग इस पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं. वो ये नहीं देख रहे कि इंसानियत हमारे अंदर मर गई है. जो हम न्यूज में अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से हैवानियत बढ़ रही है एंड वो देख के हर इंसान के अंदर की हैवानियत बाहर निकल रही है ऐसे लग रहा है मुझे. जिसकी वजह मे बी सोशल मीडिया, मूवीज, वॉयलेंस जो दिखा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इट इज लाइक टेकिंग अप टोल ऑन पीपल एंड दे आर रिमूविंग दे आर एंगर इन सम ऑर द अदर वे. दे फील लाइक इट इज राइट टू शो द एंगर.
0: बिल्कुल.
1: वॉट आई फील रिलीजन अपनी जगह है. सब की रिलीजन की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ. इवन आई एम अ हिंदू, आई रिस्पेक्ट माई रिलीजन. बट द मेन थिंग इज वेर इज ह्यूमैनिटी. वी दैट इज द मेन थिंग वी शुड आस्क अबाउट अस. ह्यूमैनिटी कहाँ है. हम बस एक दूसरे को देख के आगे बढ़ रहे बट हम क्या सीख रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. और ये जो गलत सीखना एंड ऑल दैट आई वॉज लाइक मेंटली डिस्टर्ब फॉर 2-3 डेज बिकॉज ऑफ दिस न्यूज एंड ऑल व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. आई वॉज रियली वरीड. सो दैट्स व्हाई आई रेज दिस क्वेश्चन.
0: वेरी गुड.
1: एंड अगर किसी को बुरा भी लगा देन आई एम सॉरी परवीन जी.
0: नहीं, बहुत अच्छा सवाल था. किसी को बुरा नहीं लगा. और रनेजा, ऐसे सवाल पर हमें सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है.
1: इट इज अबाउट अस हाउ वी क्रिएट how we create a beautiful world. अगर एक अगर हम कोशिश अभी करेंगे तो सच में ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी. बट किसी को एक अपना स्टेप रेस करने की बहुत जरूरत है.
0: बिल्कुल सही. बिल्कुल
1: दैट इज इम्पोर्टेंट.
0: और ये जो सवाल आज हमने पूछा है इसको हमने मजहब से दूर रख के जवाब देना है. धर्म से दूर जाकर जवाब देना है. बिल्कुल.
1: थैंक
0: यू सो मच. और समिन रनेजा जैसे सवालात अगर आपके दिमाग में आए तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं. तो फिर मैं वो पूछूंगी अगले वीक. आप मुझे कह सकते हैं आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन. तो फिर वही होगा अगले वेनसडे. कहते हैं कि हेलो. अच्छा ओके. ये किसे अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर. परवीन जी, आई रेड अ बुक सम ईयर्स बैक. इट्स कॉल्ड द एंड एंड टुडे आई एम वॉचिंग इन द न्यूज एग्जैक्टली वॉट आई रेड. बट परवीन जी, पीपल मेक देयर ओन रूल्स एज दे गो अलोंग. वन डे आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद अ विजिटर हु हैड कम टू विजिट माई फादर बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो विद माई हिंदू फ्रेंड्स फॉर गरबा. ही गेव मी अ लॉन्ग लेक्चर but I just kept quiet due to respect. But when he finished, I asked him one question. Please tell me if one of your family members is critical in the hospital, he needs blood. Will you choose a Muslim or a Hindu blood? He had no answer. Amina from Manchester. Bilkul aapne sahi kaha hai. In cheezon se to humne milon dur jana hai. Ab ye cheeze humare piche hai. ये हिंदू मुस्लिम का ना ये छोड़कर हमने किसी और रास्ते से दुनिया को बेहतर बनाना है. सोनल मोदा कहते हैं आजकल लोग दूसरे लोगों को नीचा दिखाकर अपने आप को महान साबित करते हैं. आई एग्री विद मिसेस धंजल. ये सोनल ने कहा है. शब्बीर अहमद.
2: زانی صاحبہ شبیر اگیر وینینا جی نے جو باتیں کہیں نا ایبسولوٹلی رائٹ, اس میں کوئی شک نہیں. کیا بیوٹیفل تھاٹس ہیں آپ کی, یو نو مے دی آل مائٹی بلیس یو. بریلینٹ, جسٹ بریلینٹ, مزہ آ گیا سن کے آپ کی.
0: تھینک یو شبیر, تھینک یو سو مچ انڈیڈ. اب مکیش کی آواز سننے کا وقت ہے.

0: Ti shako ora e ke ima ke shnejti. Pes bhi mene ka koi nia chha gaare. Rasila kehti hai, what a great topic. Ji, Raneja Nair, the credit goes to her. Although, jab Raneja ne call kiya, mene ka Raneja, often I have thought of it. Lekin, mujhe nahi lagta ke listeners se hume jawab milega. Lekin aapne badi koshish ki. Aur apne apne views diye, bahut achha laga. Aur Sana, Amina ne jo kaha, bilkul sahi hai. Ritu Gupta.
1: अमीन जी, मैं फिर कुछ बोल रही हूँ. सभी बोलते हैं ना, अपनी सोच बदलनी चाहिए. एक इंसान को सोच बदलने से क्या होता है? हम समाज को चेंज तो कर नहीं सकते. समाज में रहकर कुछ, समाज के जो कायदे कानून दायरे भी तो अपनाने पड़ते हैं ना. लेकिन हमारे अंदर से जो हम अपनी सोच बदल सकते हैं. और प्रवीण जी, आपको तो पता मैं कितनी बोल्ड हूँ. इतनी इतना ऑन एयर आपको मैंने काफिर वर्ड का पूछा है. और आपको पता है, मैंने जब आपके प्रोग्राम में भी अपने को बुलाया था, माइक पकड़ के आपको कैसे मैंने रिस्पेक्ट दी थी. मैं इतनी, फिर भी प्रवीण जी इतनी परवाह नहीं करती. चाहे लोग पीछे बोलते रहे, मेरे को कुछ नहीं होता लोग क्या कहेंगे. लेकिन जो मेरे मन में होता है ना, मैं तो आपकी ऑन एयर भी देखो कितना आपके बारे में अच्छा बोलती हूँ. तो ये आप बताओ, ऐसे भी जो खुले विचारों का भी कोई कोई इंसान हो सकता है. ठीक है, अंदर से सोच बदलती हूँ, लेकिन समाज में एक आदमी से कुछ नहीं होता. सही हूँ या गलत हूँ? रितु गुप्ता.
0: रितु, मुझे तो लगता है कि आप में ऐसी सलाहियत है कि अगर कुछ खराब हो रहा होता तो आप उसे बदल सकती थी. जैसे कि आपने जिक्र किया कि SST टेम्पल में आपने मेरा स्वागत किया था. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मैं बड़ी खुश हुई थी. तब मैंने सोचा कि वाकई आप बहुत बहादुर दलेर औरत हैं जो कि फ्लो के खिलाफ जा सकती हैं. यह है ना कि नदी का बहाव अगर एक तरफ है तो आप दूसरी तरफ जा सकते हैं, उसके बिल्कुल बरक्स. ऐसा हर एक में नहीं होता. थैंक यू. और आपकी दोस्ती बिल्कुल बेलौस है. आपने कभी मजहब का जिक्र ही नहीं किया इसमें. अमीर अली राणा, परवीन जी, वी टॉक्ड अबाउट बीइंग वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड बीइंग इनसेंसिटिव. वी आर बीइंग बॉम्बार्डेड विद न्यूज अबाउट द वॉर, अट्रोसिटीज कमिटेड बाय द आर्मी एंड द चिल्ड्रन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. वी हियर अबाउट इनजस्टिस इज कमिटेड एल्सवेयर. वी डू नॉट पे मच अटेंशन to those problems. Now is what are the kids going to do? मैं तो कहती हूँ अमीर अली राणा, जंग जो करती है ना, जंग जो मुसल्लत करती है दुनिया पर, फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता, उसका कोई हल नहीं होता. जिनकी जानें चली गईं, जिनको ज़िबा कर दिया गया, वो तो जिंदा नहीं होंगे. जिनको यतीम कर दिया गया, उनकी जिंदगी अजीरन होगी. तो मुझे कोई हल नहीं दिखता एट द मोमेंट, और ना ही कभी फ्यूचर में.
2: इट्स 12:20.
3: रोज साढ़े नाल जुड़ो गुरबाणी प्रोग्राम अते गुरमुख विचारां वास्ते सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक. Start your day with peace and devotion. The East African Ramgadia Board brings to you religious prayers. Tune in and be a part of this divine journey every morning from 6 a.m. to 7 a.m. on East FM. Brought to you by the East African Ramgadia.

और शोभना क्या कहती हैं, व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग सुमन कल्याणपुर. अच्छा ओके, थैंक यू सो मच इंडीड. कल हमने बात की थी सुमन, सुमन कल्याणपुर को उन्होंने सरकारी रसूमात के साथ अलविदा किया, स्टेट ऑनर्स के साथ सुमन कल्याणपुर को विदाई मिली, लेकिन कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से कोई गया ही नहीं उनके जनाजे पर, सिवाय शायद एक सिंगर के कोई नज़र नहीं आया. कहते हैं कि सिर्फ करीबी दोस्त और करीबी रिश्तेदार ख़ानदान वाले थे जनाजे पर, जो कि सोमवार को हुआ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री बड़ी बेवफा है.

सामने एक और बड़ा यूजफुल व्यू आया है और वो है आरफा दीन। आरफा कहती हैं कि देखो, उन धर्म के प्रचारों लेक्चरर्स को जो तकरीरें देते हैं धर्म पर, कहते हैं उनको हटाएं जो दूसरों के मजहब पर आग उगलते हैं। जी हाँ, समझ, ये बहुत जरूरी है कि अब अगर आप किसी महफिल में हैं और आपका जो भी है लेक्चरर, भाषण देने वाला, तकरीर करने वाला, स्कॉलर है, दानिश्वर है, पंडित है, मौलवी है, इमाम है, जो भी है, वो किसी और मजहब पर तनकीद करता है, उसके बारे बुरा भला कहता है, तो इसका बहुत ज़रूरी है कि आप एमसी को कहें कि हम नहीं बैठेंगे अगर दिस गोज ऑन। हम अपने मज़हब की अच्छी बातें सुनने आए हैं, किसी के मज़हब की बुरी बातें नहीं। वो मज़हब और उनकी बातें वो जाने, लेकिन हम यहाँ अपने कि हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपने आइडियाज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने धर्म में रहते हुए। समझ, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो इनके पास दुकान चमकाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, तो फिर ये बंद हो जाएंगे। हम भी कुछ नहीं कर रहे, हम तालियां बजाते हैं जब कोई किसी और मज़हब पर तनकीद करता है, जोक करता है, कोई चुटकला सुनाता है, तो आप उसको तालियां बजा के उसका स्वागत नहीं। अगर आप कह दें एमसी को कि देखो ये हमारे नहीं है, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, प्लीज़ इनको कहें बंद हो जाएं, और वरना वी विल वॉक आउट।

तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है. परवीन जी, टुडेज शो वाज एक्सेप्शनल. आई वाज नॉट इन अ गुड मूड दिस मॉर्निंग, बट आफ्टर जॉइनिंग योर शो एवरीथिंग गॉट बैक टू नॉर्मल. अमीर अली राणा, व्हाट अ ग्रेट थिंग. ये आपने एक्नॉलेज किया है. आई एम सो हैप्पी कि मुझे भी फील हुआ कि आई हैव मेड समबडीज, नॉट मेड हिज डे, पर फिर भी उनका मूड बदल दिया, चेंज हिज मूड. आपका इस गाने को सुनकर भी

0: और सामने किसी और ने भी कुछ कहना था। जी हाँ, जयपाल आए हैं, क्या कहते हैं?
1: हेलो प्रवीण जी, आज काफी गंभीर बातें हुई हैं, मुझे लगता है कमी मुस्कुराए लोग हमारे श्रोता, तो प्रवीण जी चलते चलते सोचा क्यों ना मुस्कुराहट के साथ ही प्रोग्राम की समाप्ति की जाए। तो हुआ यूं, प्रवीण जी प्राइमरी स्कूल में मैडम जो थी वो गहरी नींद सो रही थी, खराटे भी मेरे ख्याल मार रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए और मैडम जी पकड़ी गई सोते हुए। बहुत देर उठने के बाद मैडम जी की नींद खुली, तो नींद खुलते मैडम कलेक्टर को देखती, पहले तो घबराई, फिर बच्चों से बोली, हाँ तो बच्चे समझ गए ना, तुम्हें बता रही थी कुंभकर्ण कैसे सोता था, तो कुंभकर्ण ऐसे सोता था जैसे मैंने अभी सो को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया झूठा फटा जो भी याद आ गया, धन्यवाद प्रवीण जी, मुलाकात होगी कल, धन्यवाद।
0: वाकई अजयपाल, उसने मिसाल दी है कि कुंभकर्ण कैसे सोता था, बहुत अच्छे। हालांकि ये कुंभ है ना, किसी ने गए दिनों मुझे कहा कि कुंभा है, कुंभ एक्चुअली इज द प्रोनंसिएशन इस नाम की। और वी हैव टू मस्ट लास्ट मिनट्स ऑफ प्रोग्राम, बट रियली कहते हैं कि ना मुझे ना जाना पड़ेगा कहीं बाहर, कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से गाने आपने मिस किए हैं। एंजॉइंग द अमेजिंग म्यूजिक लिस्ट, सोनल सोनल बहुत खूब, सलीम मेहर आपने गाना भेजा है, वाकई सलीम मेहर, ये मैंने थोड़ा सा सुना है नूरा सिस्टर्स का, दुनिया मतलब दी सब, वो गाना कहते हैं कि आज जो हमारी डिस्कशन हुई है ना, इट वुड हैव बीन सो अप्रोप्रिएट इफ आई कुड हैव प्लेड इट, किसी दिन ज़रूर, लेकिन है बिल्कुल अप्रोप्रिएट, मुनासिब था, अगर सामने होता तो जल्दी से मैं सुना भी देती।

रने जा नायर कहते हैं ये अजय पाल कहां से लेकर आते हैं इतने ब्यूटीफुल जोक्स. कुंभकरण का जोक तो बहुत ही पसंद आया है आपको. अच्छा बड़ी अच्छी बात है. समिन एक गाना मैंने सोचा था रखा हुआ है काफी देर से, कल भी मैंने आपको सुनाना था नहीं सुना पाई.

कांटों से दूर आप नहीं जा सकती, कहीं फूलों की छाया नहीं है, कांटों में रहना है। सामिन आखिरी दो गाने आपके लिए छोड़े जाती हूँ और कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई सवाल आपको परेशान करे मुझे बताएं, हम किसी ना किसी तरह उसे फ्रेज करके लिसनर से पूछ सकते हैं। तो आप कल का इंतज़ार कीजिएगा, दो गाने ज़रूर इंजॉय करें।

0: intro to right now on East FM.
1: How does it feel to hear me in the middle of the day in the afternoon? I'm super excited as I embark on a new journey. You know, ऐसा लग रहा है कि life पूरी round circle में आ गई. मतलब मैंने 8 साल पहले East FM पे काम शुरू किया. And then I was on there on Saturday show. Then I went on the evening show with Vikash. Then I was in the afternoon for a long time. Then again I was in morning show on breakfast. Then I went back on drive and again I'm in the afternoon. ये यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ बट मज़ा आता है ना. चेंज इज़ गुड, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट एंड चेंज इज़ ऑलवेज फॉर द बेटर आई फील. सो येस आई एम वेरी एक्साइटेड एज आई एम गोना शेयर दिस जर्नी विद यू ऑब्वियसली ऑन ईस्ट एफएम. इट्स कॉल्ड रेट्रो टू राइट नाउ. सुपर एक्साइटेड बिकॉज हमारा जो म्यूजिक रेंज होने वाला है ना शो में बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है. हाँ जी, तो मेरे साथ रहिए राइट अप टिल 4 PM. एंड बिग थैंक यू टू विशाल फॉर thing in for me last week as I was on break. I had actually traveled. वो सारा कुछ तो मैं आपको शेयर के साथ शेयर करूंगी और आपका दिमाग तो मैं खाने वाली हूँ, तो तैयार रहिए. So let's party. Okay, let's have fun. There is a lot of stuff lined up for you. And for now, Neeti Mohan, Jubin Nautiyal coming up next. Keep it East FM. You're on Retro to Right Now with Nilufer.
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स.

0: मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के कि आप बिल्कुल म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं. वेल दैट्स द होल पॉइंट, यू नो, चेंज इज कांस्टेंट एज आई सेड, चेंज इज गुड. एंड हमारी यही कोशिश रहती है ईस्ट एफएम पे कि हम आपको एंटरटेन करें विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑलवेज, बिकॉज वी एब्सोल्युटली लव योर कंपनी, वी लव योर लव एंड सपोर्ट. ओके, वी आर गोइंग टू गेट इनटू द नेक्स्ट आवर ऑफ द शो. बहुत सारा एंटरटेनमेंट लाइंड अप है आपके लिए. और दिल से कह दो पे सवाल ये था कि अगर आपने आपके दिल में कोई बात ऐसी रह गई, यू नो, लाइक यू वांटेड टू अपोलोजाइज टू समवन इन योर लाइफ एंड यू नेवर डिड, यू ऑलवेज लेफ्ट इट इन योर हार्ट, हु वुड इट बी एंड व्हाई? So I've got a lovely message from Manish saying, my brother and we fought over silly things and never made peace. We've grown up but we still fight over things and somewhere I feel I could just apologize and let it go. Well, do that. Agar aapke dil keh raha hai, that means it needs to be done. And you know what? We always miss people when they leave this world or they go away from you, go far. So why not make it earlier? You know, why not make it happen earlier and do it right now if you can. You know, just apologize and say, you know what? I'm really sorry for whatever reasons that you want to say sorry to. I've got a fun one as well. And you haven't mentioned your name. You want to say sorry to your alarm clock because you really abuse it in the morning. You know, aise alarm bajta hai, usko maar maar ke band karte hain. So you want to say. But alarm is also like, arey uth jao, subah 6 baje kaun uthega? So that was a good one. Thank you so much. I wish you mentioned your name. So whenever you message me, please, please, please do write your name so I know who's messaging me, okay? This is Retro to Right Now with Nilufar. We're going to get into the next hour of the show. Keep it East FM.
1: East FM. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: East FM पे आज की अहम खबरें. 3 जून दिन के 2 बजे पहले खबरों की सुर्खियां. अमेरिका का बयान ईबोला क्वारंटीन सेंटर पर. राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका सरकारी दौरे पर. साउथ अफ्रीका में नस्ल परस्ती की आग में 2 की मौत और दुनिया के मौसम के बदलाव पे पेशन गोई. खबरें तफसील से. अमरीकी राष्ट्रपति के हेल्थ सलाहकार डॉक्टर महमत ओज ने कहा है कि वो पूर्व उम्मीद है कि केन्या में ईबोला का क्वारंटीन सेंटर खोलने पर इत्तफाक हो जाएगा. डॉक्टर ओज के मुताबिक और भी देश हैं जो अमरीका की मांग पूरी करने को तैयार हैं. सदर विलियम रूटो साउथ अफ्रीका के 3 रोजा दौरे पर रवाना हुए हैं सिरिल रामापोजा की दावत पर. दोनों ममालक के दरमियान तिजारती रास्ते खोलने पे बात होगी. इकोनॉमिक सतह पे संबंध बेहतर किए जाएंगे. नैरोबी के सेनेटर एडविन सिफोना ने कहा है कि इबोला के इलाज के लिए फैसिलिटीज DRC में खोली जाएं, ना कि मरीजों को सरहदें पार करवाकर लोगों की जानों को खतरे में डाला जाए. माली मदद दी जाए कोंगो को वबा से निमटने के लिए. आलमी खबरें. साउथ अफ्रीका के मोसल बे में 2 मोजम्बिक के आदमियों को मार दिया गया. मोजम्बिकन हुकूमत का कहना है कि उनके 5 शहरी हलाक कर दिए गए हैं ज़िनोफोबिक हमलों में. कई दिनों से दक्षिण अफ्रीका में एहतजाज कर रहे हैं आवाम गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ. मोजम्बिक से आने वाले जुनूबी साउथ अफ्रीका में बसे हुए हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं. वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस साल दुनिया में बदतरीन मौसमी हालात पैदा होंगे. 80% खतरा है कि जून और अगस्त के दरमियान एल नीनियो शुरू हो जाए जो नवंबर तक रहे. हर 2 से 7 साल के वक्फे में एल नीनियो होता है. धरती ज्यादा गर्म हो जाती है, बारिश कहीं कम कहीं ज्यादा के सैलाब आते हैं. इस बार सुपर एल नीनियो मजीद खतरा लेकर आएगा दुनिया के लिए. रशिया ने तालिबान के साथ मुआहदा कर लिया है फौजी तआवुन का. मिलिट्री कोऑपरेशन से अफगानिस्तान और रशिया में नज़दीकियां बढ़ेंगी. माना जाता है कि तालिबान रूसी फौज को तजुर्बेकार फाइटर्स देगा. 2024 में नॉर्थ कोरिया ने भी यही किया था. ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टाइन के हक में बोलने वाले स्ट्रीमर हसन पाइकर और उनके चचा को यूके आने से रोक दिया है. दोनों को ऑक्सफोर्ड यूनियन में तकरीर करने की दावत दी गई थी. यूनाइटेड किंगडम हुकाम का कहना है कि पाइकर और उनके अंकल का मुल्क में मौजूद होना पब्लिक गुड के लिए नहीं है. पाइकर के मुताबिक आज़ादी राय को कुचला जा रहा है एक गैर एपेटाइड मुल्क के हुक्म पर, इसलिए कि ये देश मिडिल ईस्ट की जमीन पे कब्जा जमाना चाहता है. مغربی بنگال کی سابق وزیراعلی ممتا بینرجی نے کولکوٹا میں تازہ دھرنا دے دیا ترنمول کے 8 نیتاؤں نے بھاگ لیا ممتا کا کہنا تھا کہ بی جے پی ان کی پارٹی کے رہنماؤں پہ حملے کر رہی ہے مگر آپ یا تو لڑیں گی یا پھر مریں گی بی جے پی نے ان کے ووٹس حالیہ چناؤ میں لوٹے ہیں یہ تھیں آج کی خبریں میں ہوں پروین آدم
1: Kickstart your afternoon with retro classics, Bollywood vibes, and the hottest hits right now. This is Retro to Right Now with Niloufar.
0: As life takes me full back in circle, I'm here on Retro to Right Now this afternoon, and it's going to be every weekday, 1 to 4 p.m., only on East FM. I'm super excited as this show has so much to offer to you, and because you absolutely deserve it, you deserve to be loved, you deserve to be entertained, because you give us that lovely company. So keep that going. I'm starting off this hour with Swanan Kirkire, with Navri Maji, and uske saath saath is ghante mein bhi hum bahut saari baate kare. I have something very interesting to share with you on Bollywood and beyond, and a very interesting fact on facts. Did you know? Yes, it's going to happen in this show as well. So keep it East FM.

0: कितना मजा आ रहा है ना. आई एम एब्सोल्युटली लविंग द म्यूजिक एंड आई थिंक इट्स जस्ट ब्रिलियंट टू हैव दिस वाइड वैरायटी ऑफ रेंज ऑन वन शो. और हमारी रोज यही कोशिश करेंगे हम कि आपको एंटरटेन करें विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइक ऑलवेज ऑन रेट्रो टू राइट नाउ विद निलोफर ऑन ईस्ट एफएम केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स. आई हैव समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू ऑन
1: बॉलीवुड एंड बियॉन्ड.
0: A lot of Bollywood news is always, you know, there. कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. आजकल फिल्में तो वैसे भी पता नहीं क्या डब्बा फिल्में बना रहे हैं. कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. Like, what are they trying to prove? What are they trying to make? What are they trying to process in front of us on screen? I'm just not finding it interesting. Especially when it comes to big movies, okay, web series or short films or was a bodhi. In fact, if you go online, you'll find such nice, you know, award-winning short films. जो 10 मिनट की होती है, 15 मिनट की. मैंने recently इरफान खान की देखी एक बहुत पुरानी. It floated back on socials and you know everywhere recently. उसमें विद्या बालन है और साथ मेरे को लगता है 10-12 मिनट की फिल्म है एंड इट वॉज सो इंटरेस्टिंग. सो व्हाट्स हैपनिंग विद बिग फिल्म्स इज क्वाइट सैड. आई मीन हाफ वे थ्रू द फिल्म यू वांट टू गेट आउट ऑफ द थिएटर एंड लाइक ओ माय गॉड व्हाई डिड आई इवन बॉदर. सो ऐसे में अभी स्टोरी फ्लोट कर रही है सलमान खान की फिल्म जो उन्हें कास्ट नहीं कर रहे हैं बट इट इज ऑन हिज लाइफ. इट्स कॉल्ड काला हिरन द बैटल ऑफ लेगेसी. ओके सो काला हिरन इज रिपोर्टेडली इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट widely discussed legal controversies involving Salman Khan, jisme the project is already generating headlines and sparking discussions amongst film lovers and industry observers. So is film ki jo theme hai wo hai legacy, public scrutiny and impact of high profile legal battles, you know, that happens on celebrities and society. So discussion jo hai film ka ye hai ki filmmakers ko aise inspiration lena चाहिए जो रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज है या कोई स्टोरीज जो है वो स्क्रीन पर नहीं आए तो ही ठीक है. मतलब जो भी उनका हुआ काला हिरन वाला केस सलमान खान का, सालों साल ये केस उनका कोर्ट में चल रहा है. ही इज बीन फाइटिंग दिस बैटल इन द कोर्ट वट एवर हैपेंड बट doesn't it happen in real life? Thousands and thousands of people go to jungles and they shoot animals, they kill animals, not only in India but worldwide. So why only you know scrutinizing Salman Khan just because he's a celebrity? So Kala Hiran is something I would never watch because it is not because it's Salman Khan case, it is just not needed. What do you think are these real life controversies stories important or they can focus on better subjects, better stories? Let me know. This is Retro to Right Now with Nilufar on East FM.
1: This is East FM, Kenya's Premier Asian Mix.
2: It's 2:28. When you or your family need trusted healthcare, distance should not stand in the way. World-class care from Aga Khan University Hospital is now closer to you at the new Gigiri Specialty and Executive Clinic located at Petro City along Limuru Road. Whether you live or work in Gigiri, Runda, Nyari, Red Hill Road or the wider Limuru Road area, you can now access quality care closer to home. The clinic offers general consultation and clinics with various specialists. You can also access executive wellness checks supported by diagnostic services including ultrasound and x-ray. And for even greater convenience, Aga Khan University Hospital also offers home care services across Nairobi including home delivery of medication and collection of laboratory samples from home. Aga Khan University Hospital, world-class care here and now.
1: Kenya's Premier Asian Mix means always

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: How kind and down-to-earth Madhuri was on the set, making it very easy for the whole team to connect with the icon. That's absolutely wonderful.
2: Don't just listen, choose it. Request your song now on Retro to Roy Now.
1: हमने कहा क्यों नहीं भाई, अगर हम म्यूजिक अच्छा प्ले करते हैं तो आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है. सो एनीथिंग दैट आई कैन प्ले फॉर यू दैट गोज विद द वाइब ऑफ द शो. यू बीन लिसनिंग द शो फ्रॉम 1 PM, स्पेशली व्हेन कम्स टू द 90s और अर्ली 2000s और एनी लेटेस्ट ट्रैक. इफ यू वांट अ रिक्वेस्ट यू कैन एक्चुअली, एंड वी गोना मेक इट हैपन फॉर यू. सो ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ कॉल 0711 046 106, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 0701 106 106. This is Retro Right Now with Nilufar on East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: कितने भी रीमिक्स बना लो, रिहैश कर लो, ओरिजिनल तो बॉस ओरिजिनल ही रहेगा. आई लव सुष्मिता सेन इन दिस सॉन्ग. इट्स प्लेइंग फॉर यू ऑन ईस्ट एफएम, केनिया'स प्रीमियर एशियन मिक्स. यू आर ऑन रेट्रो टू राइट नाउ विद निलोफर.
1: हैक इट लाइक मॉम.
0: सो हैक इट लाइक मॉम इज ऑल अबाउट मॉम्स हु आर, you know, trying to find their ground, trying to cope up with the family, trying to cope up with their work, and as an individual, kahin na kahin individuality tel lene chali jati hai. You know, when you become a mom, so how do you stay grounded? How do you know that yes, you are a mom, but then you are a human being as well? So I read this very interesting thing called the rule of three. To jahan par pata chalta hai, aise din aate hain jahan itna sara kuch karna hota hai but you end up doing nothing because itni lambi list hoti hai, आप कुछ कवर ही नहीं कर पाते, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, देन यू लाइक ओ माय गॉड वेयर डिड द डे गो. सो व्हाट यू डू इज यू मेक अ लिस्ट ऑफ थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, फॉर एग्जांपल रिप्लाई टू एन इंपॉर्टेंट ईमेल. ओके, सेकंड वन फिनिश वन वर्क टास्क, वन वर्क एट अ टाइम. एंड द थर्ड वन गो फॉर अ 20-मिनट वॉक. ट्रस्ट मी, वंस यू हैव कंप्लीटेड दोज थ्री थिंग्स यू हैव ऑलरेडी वन द डे. एंड द फनी थिंग इज आफ्टर फिनिशिंग दोज थ्री

0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Namaste, behnor bhaiyo. Bade hi kam shabdon mein aapko sunana chahta hu. Us saal ka lokpriya geet. Ye. ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

टोनी सॉप क्या बोल रहे सब लोग, एम वे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे, लेट्स डू इट।

मर्दों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: बहुत सारे सही जवाब आए एंड स्टार्टिंग विद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नॉन अदर देन मंजू यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर सो हैज संगीता यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर एज वेल एंड मिस्टर बिपिन मोनिक्षा सोनल जयश्री ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स एंड फॉर योर कंपनी Coming up, second hour is going to be full of entertainment and ek aisa topic jahan pe I would love to hear from you.
1: Kenya's premier Asian mix. East FM.

0: That's playing for News to FM, Kenya's premier Asian mix. This is the City Lights with Vishal. And have you ever wondered why nobody taught us how to manage money before handing us the bills? Many people can calculate complex equations but struggle with budgeting, saving and avoiding debt. Financial literacy isn't just for bankers and accountants. It's about understanding where your money goes and making it work for you. Because earning money is one thing. Figuring out where it disappeared is a whole different skill. And hum baat kare about what's one skill that everybody should learn. And I've gotten a message from Sonal, and she goes on to say cooking. And I actually agree with that, because kya hota hai ke we've got jaise the students, I'll give you, this is a very good example about the students who go abroad to learn for further education. To उनको खाना बनाना अगर नहीं आता, चलो मेस में भी अगर रहते हैं, अगर हॉस्टल्स में भी रहते हैं, तो हाउ मच कैन यू ईट कैंटीन का फूड? अगर कुछ घर में बनाना आता हो, सो यू विल एक्चुअली मेक इट एंड एन्जॉय योरसेल्फ एज वेल. एंड इसी के साथ भी यू नो, इंडिया में तो मेस की तो अलग ही बात है. एंड जो अगर खाना जब 9:30-10 बजे तक हॉस्टल का खाना ख़त्म हो जाता है, देन वी गॉट मिडनाइट स्नैक जो एवरीबडी एन्जॉयज, एंड दैट इज मैगी. मैगी तो सब बना ही लेते हैं ना कि नहीं? एंड विद दैट, राइट नाउ इज टाइम फॉर योर ट्रांसलेट चैलेंज. आज की मूवी बहुत ही ईजी है, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेस वेरी ईजिली. सो इन हिंदी इट इज 4 words, एंड इन इंग्लिश इट साउंड्स लाइक दिस: आई गेव माई हार्ट टू यू, आई गेव माई हार्ट टू यू, और आई हैव गिवन माई हार्ट टू यू. कौन सी मूवी है ये इन हिंदी? यू कैन शेयर योर थॉट्स विद मी एंड योर आंसर्स ऑन 0701-106-106.
1: दिस इज ईस्ट FM, केन्या's प्रीमियर एशियन मिक्स.

0: फील ले ले रे टेकिंग ऑफ द मूवी बजरंगी भाईजान प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम केनेस प्रमोशन मेक्स दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल एंड हम बात कर रहे थे अबाउट द स्किल्स वन ऑफ द स्किल दैट एवरीबॉडी नीड्स टू लर्न. थोड़ी देर पहले हमने खाना बनाने की बात की, देन वी हैड अ टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. एक ऐसी स्किल भी है जहाँ पे इट इज बहुत ही नेसेसरी है और इमरजेंसी में यही काम आती है. सो इफ समवन कोलैप्स्ड नेक्स्ट टू यू राइट नाउ, वुड यू नो व्हाट टू डू? मोस्ट पीपल होप दिल नेवर फेस एन इमरजेंसी, बट इमरजेंसीज रियली गिव यू वार्निंग्स. बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स कैन हेल्प यू स्टे काम, असिस्ट समवन इन नीड एंड प्रोबेबली सेव अ लाइफ बिफोर प्रोफेशनल हेल्प अराइव्स. Your phone battery might die, the internet might disappear, but knowing basic first aid never runs out of charge. And I think first aid एक ऐसी चीज़ है, हम स्कूल में I'm sure आप लोगों को भी सिखाया गया होगा basic first aid कैसे करने का है. And I think it's very very important basic first aid skills learn करना. And there are institutions that also teach basic first aid. And कुछ ऐसे हैं चीज़ें हैं that for example ब्लीडिंग रोकने के लिए या किस कोई अगर समवन इज फीलिंग नॉशियस क्या करने का है, तो ये सब चीज़ें आई थिंक दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. बेसिक फर्स्ट एड सीखना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स इन टूडेज वर्ल्ड. एंड विद दैट बहुत सारे सही जवाब आ रहे हैं फॉर द ट्रांसलेट चैलेंज. एंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नन अदर देन सोनल, यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. साथ ही साथ में Manju has given me the correct answer, so has Mr. Bipin, Jayshree and a few others as well. Thank you so much for your answers and for your company. And first aid, yaad rakhna, very important.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: That's playing for East FM, Kenya's premier Asian mix. This is The City Lights with Vishal. And hum baat kar rahe the about one very important skill that you can learn. Bahut sari aisi skills hai that we can learn and kaam aati hai kahin na kahin zindagi ke padav mein, kahin na kahin when we are, life is changing, moments are changing. It does help you in one form or another. Humne cooking ke bare mein baat ki, humne communication ke bare mein baat ki, humne first aid ke bare mein baat ki. So the world is changing faster than ever. The jobs, tools and technologies of today may look completely different tomorrow. That's why some people argue the most important skill isn't a specific one at all. It's the ability to learn, adapt and keep growing. The people who thrive aren't always the smartest. They're often the most willing to learn something new. In a world that keeps updating itself, maybe the ultimate skill is knowing how to update yourself too. So her skill important hai, and I think jaise maine bola abhi ke in today's world learning skills is very important, new skills is very important, and iske saath hi you know kuch aisi cheeze hain that a few people find uncomfortable doing, jaise for example carpentry. बाहर वाले अगर बाहर के देशों में हम जाएंगे, आई नॉट नेम एनी पर्टिकुलर कंट्री, बट अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे वो हमेशा कहते हैं अनस्किल्ड लेबर, कुछ लोग बोलते हैं स्किल्ड लेबर, एंड देन पोस्ट आ जाती हैं कि ये देश में आओ ऐसा ऐसा काम करो. सिंपल से जॉब होते हैं कारपेंट्री जो लोग और प्लम्बिंग जो लोग समझते हैं कि इतना बढ़िया काम नहीं है, डजंट पे वेल एंड दिस दैट एंड दी अदर. बाहर वाले देशों में इट डज इट्स अ स्किल एंड दे वॉन्ट पीपल हु नो दिस स्किल. सो आई थिंक लर्निंग स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे कुछ भी काम हो. एंड जाते जाते आई विल लीव यू विद दिस. हमेशा आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड आई ऑलवेज कोट देम इन वन वे और अनदर. सो मेरे माँ बाप हमेशा मेरे को यही सिखाए, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बट देर इज़ वन थिंग दैट आई नेवर फॉरगेट एनीथिंग. बट एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज हम स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे, आई विल से दिस, से कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर आप उसे पूरी मेहनत और लगन से करो. And with that, it's a wrap from me on The City Lights with Vishal. Hum milenge kal, same time. Until then, aap apna khayal rakhna. And yes, if you get to learn a new skill, please go for it.
1: Your favorite stars.
2: This is Aamir Khan.
3: This is Akshay Kumar.
4: This is Adi Vastam.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
1: Love East FM.
6: You're listening to East FM.
7: You're listening to East FM.
8: You're listening to East FM.
9: East FM, Kenya's premier Asian mix.

चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और हो

0: मार गया
1: नी। All the favorite songs you grew up listening to.
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं।
1: And the premier mix of today.
0: ये जिस शेर खुल गए।
1: East FM, Kenya's

0: East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर

मेरे लिए लिख दे, ना दुनिया के लिए लिख दे, ना मेरे लिए लिख दे, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिख दे, गालिब जिंदा होते।

0: ये हाथत बॉम्ब सोडा अड़े रॉकेट का ये फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: Fugadi Poo, you like me and I like you too. Oh, bye, Poo, Fugadi Poo, you like me.